सुखदत् वसुदेवसुतन्न परङ्गलजे अभिरामगुणागरदासरथे जगते गधनुद्धर धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो

0: सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हाटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का।

0: उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाया।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

0: कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9 kilometre long Package 6 of the four-lane Greenfield

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर्म फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिस

अल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रमवन ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह भारत के खलाई सफर में एक दूरस और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी की महज कोई बयान नहीं बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अजम मुसम्मम है। भारत के मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई इलाके और सिक्किम में कल तक बहुत तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड्स पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाकई सतीश धवन खलाई मरकज से आज दोपहर 12:05 पर भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी तौर पर तैयार कर द विक्रम 1 की कामयाबी पर स्काई रूट्स एरोस्पेस की टीम को टेलीफोन के जरिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह तारीखी कामयाबी मुल्क के नौजवानों को आगे बढ़ने और इख्तरा में अपने रोल अदा करने के लिए हौसला अफजाई करेगी। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि स्काई रूट्स की टीम में ज्यादातर नौजवान माहिरीन शामिल हैं। उन्होंने विक्रम 1 की टीम को मुलाकात के लिए मदु भी किया।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: वजीर आजम ने मजीद कहा कि यह कामयाबी मुल्क के बेशुमार नौजवानों को बड़े ख्वाब देखने और बेखौफ होकर नई इजादात करने की तरगीब देगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी भारत के पहले निजी तौर पर तैयार करदा रॉकेट विक्रम 1 की कामयाब लॉन्च पर स्काई रूट की टीम को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के तेजी से तरक्की करते हुए निजी खलाई शोबे के लिए एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी खलाई टेक्नोलॉजी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियत और फरोग पाती हुई खलाई मईशत की अक्कासी करती है। विक्रम 1 को हैदराबाद में वाकई खलाई कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने डिजाइन और तैयार किया है। मिशन आगमन के तहत तैयार किया गया रॉकेट कम लागत और पायदार अंदाज में छोटे सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए बनाया गया है। भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखे गए इस रॉकेट में ठोस ईंधन पर मबनी 3 मराहिल हैं, जबकि मदार में एडजस्टमेंट मॉड्यूल में रकीक ईंधन से चलने वाला रमन इंजन नसब है जो रॉकेट को दुरुस्त मदार में दाखिल करने और मदार में मतलूबा तब्दीलियां अंजाम देने में मदद फराहम करता है। यह रॉकेट जमीन की सतह से तकरीबन 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की बुलंदी पर वाकई मदार में पेलोड्स पहुंचाने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक वाजह दो टोक और मजबूत मौकफ है। आज नई दिल्ली में मुनाकिदा फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को सिर्फ अपनी सरहदों पर नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी निशाना बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बखूबी मुशाहिदा किया जो जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की एक नुमाया मिसाल थी।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन

0: टूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न सिर्फ भारत की दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने बल्कि दिफाई जरूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार कम करने का भी अजम किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसल्ह अफवाज की जदीदकारी के लिए मुख्तस बजट का 75% हिस्सा भारतीय सनत से दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए महफूज रखा गया है।
0: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से पहले कल सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। इजलास पीर से शुरू होगा। मीटिंग के दौरान सरकार सभी सियासी जमातों का ताउन हासिल करने की कोशिश करेगी ताकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुशुसलूबी से चलाई जा सके। मानसून इजलास पीर से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम कानून बहसो मुबाहसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल तरीके पर नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दरमियान रेल राब्ता बढ़ जाने का एक नया दौर शुरू हो गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रेलवे के वजीर जनाब वैष्णव ने कहा कि रेलगाड़ी हफ्ते में 2 बार चला करेगी और उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान भी राब्ते की सहूलत फराहम होगी।
2: ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे।
1: अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक इदारे ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में फैली हुई बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। उसने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों के मारे जाने की तफ्तीश का भी मुतालबा किया है। इंसानी हकूक से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान के हुक्काम पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ करें और इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के वाक़ियात की जिम्मेदारी तय करें। वहां इस महीने के आखिर में इलाकाई इंतखाबात होने हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी इलाके और सिक्किम में कल तक बहुत तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश और बाद में निहायत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, माहे, उड़ीसा और शिमाल मशरकी रियासतों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में 4थे नंबर की चीनी खिलाड़ी चिन युफेई मैच के दूसरे सेट के दौरान जख्मी होने के बाद रिटायर हो गईं, जिसके बाद पीवी सिंधु को फातह करार दे दिया गया। कल फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में फ्रांस स्पेन से हार गया था, जबकि दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोभे ने तैयार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह भारत के खलाई सफर में एक दूरदर्श और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी महज कोई बयान नहीं, बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अजम मुसम्मम है। और पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the Midday News.

0: भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र

0: अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम-1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम-1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन दी हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे newsonair और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आर्म फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
1: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता

0: आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ఆకాశవాణి కొత్తగూడెం కేంద్రం కిన్నెర లహరి శ్రోతలు ఉత్తరాల ద్వారా కోరుకునే చిత్రగీతల కార్యక్రమం ప్రసారం. కార్యక్రమంలో మరి మన మొదటి శ్రోత నిజామాబాద్ న్యూ ఎన్జీఓస్ కాలనీ నుండి నాగనాథ్ గుప్తా, గోదావరి గుప్తా, రవి, రాజు, సవిత, లావణ్య, శ్రీనిధి, శ్రీహిత, రుషికేష్, అక్షయ్ వీరందరి కోసం పౌర్ణమి చిత్రం నుండి ఈ పాట.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई

0: महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 72nd National Film Awards were announced today. The Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. The award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. In the non-feature film category, Shivpal Singh Kang will get the Best Music Direction Award for Parat 41 Degree Chaya Magawar. Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best short film is Hamsafar in Marathi. The best non-feature film is Bhangar, directed by Sumira Roy. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 under Mission Agman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram-1 under Mission Agman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
2: उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram-1. The minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. In Gujarat, 8 people were killed and 10 others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramolgathad Road in Ahmedabad. Our correspondent reports that the Rapid Action Force personnel rushed to the site immediately.

0: अरे सुन तो।
1: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
0: किसको?
1: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
0: अच्छा ये बात है?
1: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
0: अब तो झट से बात हो जाती है।
1: ऐसा क्या?
2: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
1: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
0: हाँ
1: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
3: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
4: ఈనాటి వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమంలో జలమే జీవం, ప్రతి చుక్కను భద్రపరుద్దాం ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహణ శ్రీ కొలిపాక శంకరరావు.

0: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर

0: सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
4: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की

घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमले

0: जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र आईसीसीआर के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, बीएचयू कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड यूएसए से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devvrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries, such as USA, Canada, Spain, France, Italy, and Germany. Devvrat Mishra has been honored with the National Youth Festival Award, Swarmani Alankaran, Kashi Ratna, Sangeet Shikhar, BHU Kaustubh Samman, German Best Jazz Critic Award, and the World Music Visionary Award, USA. In tonight's program, accompanying him on tabla is Prashant Mishra, an A-grade artist of Akashvani. Devvrat Mishra is beginning his sitar recital tonight with Raag Jog, Vilambit and Dhrutgat set to Teen Taal.

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।